0: मग एक चान्स
1: चान्स ही ना काही ना गेट लॉस्ट
2: गेट लॉस्ट
0: इंग्लिश इंग्लिश
2: गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट मरिया मरिया आओ आओ तू का परफेक्ट अरे मग एक री एग्जाम दे आओ गैर नहीं पास आता
1: री एग्जाम ही ना काही ना तुम्ही तेगी जन फेल समझला हाय डार्लिंग
3: हेलो मरिया काय असाय
1: आओ अंगे एक तीन माम कोड़ा सत तंगा बुझ को भी अमनो नहीं ले
3: अरे ओके
1: या आई एम ओके ये काले गुत्ते से तू आम चे काजर विषय से सबले काय टेंशन करी नका आम चे काजर सुपर ग्रैंड जाता
3: ग्रैंड करिया तो से करो मजा लगे इतले पैसे गए सब
1: अरे तू काय ते विषय टेंशन कर नका आम चे काजर मात्र सुपर जाता
3: टेंशन करी नता ना मगे काजर ग्रैंड करू कर सनांगे
1: अयो तू कर से विषय टेंशन करी नका ने
3: मुलार
1: मुलार मका गट तेग दट्टू असत
4: कॉमेडी कंपनी मंगलोर हनी हंचा हास्य नटकुल्या द्वारी आमकां बरें मनोरंजन दिल्लें आनी भरपूर हसयलें स्पर्ध्यान बरें मागतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटां.